0: सबके बकरे आ गए, हमारा बकरा कब आएगा?
1: प्यारी बहन, चलो बाबा जान के साथ मंडी चलते हैं। बकरा भी लाएंगे और गाय भी लाएंगे,
0: इंशाल्लाह।